जय आय संगारे हर का नाम तत्काल उधारे मन के जौन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबू न तोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग जे मारे के गंजाय न कोसा हर का नाम हुआ संग तोसा जे पैंडे मह अधिक बारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को ना सियानु हर का नाम धनाल पिछानो जय महाप्यान तब भो काम तय हर के नाम तुम परिश्याम जहाँ त्रिका मन तुझिया कर खै तय नानक हर हर अमृत भर खै भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उतरे जन को होट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कुमार हर जन के हर नाम निदान पार बम जन की नो दान मन धन रंग हृदय रंग एक है नानक जन के बिरध विवेका हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग हर का नाम जन की वरियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कही नए भियोग जन रहता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मालिक जीना हर धन जन को आप प्रभु दीना हर हर जन कह ओट सितानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाज नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जप है हर का भगत प्रकट नहीं शप है हर की भगत मुक्त भव करै नानक जन संकेत तर है पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द दुख लथा नाम के मैं संत हृदय बस है संत प्रताप दुर सब नसा संत का संग बड़ पागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तो कुछ अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को हो श्लोक बहु शस्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व डोल पूज ना ही हर हरे नानक नाम मोल बधि जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खर शस्त्र सिमृत ज्ञान योग व्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बने में दे फिरया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्तनेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रेम परे चिर जीवे महाअवदास तपी सर जीवे अग्निमय होम प्राण कनक अश्व है भरपूम दान नवली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम यत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हो मैं न जावे हर के नाम संसार किस ना है नानक गुरमुख नाम जब गत पाए मन कामना तीर दे छुटै गुरु को मान न मन ते हुटै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साध न करे मन ते कबू न बिख्या ठहरे जल तो हुए बहु देह अनीत शुद्ध को शुद्ध कहा हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम रे पथ बहुमूच बहुत से अन जम का पो व्यापै अनक जन गृष्ण त्रापै पेख अनेक अगर नहीं बुझै कोट उपाव दरगाह नहीं सिजै शूर सनाही ओ प्याल मोह व्यापे माया जाल अवर कर तू सगली जम डान गोबिंद भज में तिल नहीं मान हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सार जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लोरे सात संग ए होमे शोरे जे को जन्म मरण ते डरे सा जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिढे महान आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सब ते उच्चा जाका मन हो सगल की रीना हर हर नाम धन कर कर जीना मन अपने दे पुरा मिटाना पेखे सगल से साजना सुख दुख जन समझ चेता नानक पाप पुण्य लेपा निधन को धन तेरो नाओ निथामे को नाम तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गल में जानो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस तो तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मल मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत

सला जी जय प्रसाद शक्ति अमृत सुखाए तिल ठाकर को राख मानवाए जय प्रसाद सुगंध अंतर लावे तिसको सिम परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे चाहे सदा मने अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिसे रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यागन जोग जय प्रसाद पाल पटंबर हंडावे तिसे त्याग अवर लुभावे जय प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पहर तागा जस गवि जय जय प्रसाद तू सबको मान है मुक्ता को जस रसन बखान है जय प्रसाद तेरे रहता धर्म मन सदा त्याग केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दरगह मान पावे नानक पासे थी कर जावे जय प्रसाद रो कंचन देही निर्मला वो तिस राम सनेही जय प्रसाद राहुल ला रहत मन सुख पावे हर हर जस गायत जय प्रसाद सगल सिदर ठाक है मन सरणी प्रभु ठाकर प्रभु ताक है जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन साध साध सिमरो प्रभु उच्चा जय प्रसाद भाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत कराए जय प्रसाद भूखन पैरी जाए मन ते सिमरत के हाल सिखी जाए जय प्रसाद अशुभ हस्त अशुभारी मन तिस प्रभु को कबू ना विसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रभु प्रभु अपने मना जन तेरी मन बंत बनाई ऊर्स बैस तिसे ते आई तिसे ते आए जो एक लख है इहां उहां नानक तेरी रखा जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर दिसका ध्यान जय प्रसाद तो आचार बिहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद सुने करनाथ जय प्रसाद पेखे बिस्मार जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना जय प्रसाद हर्ष कर चल है जय प्रसाद सपूरन फल है जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सह संभावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कद लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिर प्रभ को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप ते मन मूर्तता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साज हे मन मेरे तू तासे उराज जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगाद प्रभु दया ते कमल विगाद प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया मत उत्तम होए समझदान प्रभु तेरी माया आपू कछु न किनु लया जित जित लाभ होते तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु न हाथ श्लोक गाम गाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना के अज कथा अष्टपति साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगल खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभु नेरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध के महिमा बरने कौन फरानी नानक साध की शोभा ब्रह्म समानी साध के संग गोचर मिला साध के संग सदा पर फुला साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पहुंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बहन साध के संग न कदू तावे साध संग अस्थिर मन पावे साध के संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभ सो परसन साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महापनीत साध संग के सो नहीं बैर साध के संग न भींगा पैर साध के संग नहीं को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं होता साध के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कब हूं तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर रहे साधु के संग जार सहे साध के संग बसे थान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब को उधारे साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे साधु के संग सोतन पावे जिस तन ते सब को बरसावे साध संग धर्म रहे करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गाम नानक साध के संग सफल जनम
साल के संग नहीं कई काल दर्शन भेड़ होत निहाल साल के संग कलू गुद हरे साल के संग नरक पर हरे साल के संग यमन सहेला साध संग बिशरत मर मेला जो इच्छे सोई भर पावै साध के संग न बिर सा जावै पार ब्रह्म साध रिस बस है नानक उदरे साध सुन रस है साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तर है साध के संग लगे ब्रह्म मीठा साधु के संग कर कर डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध के महिमा भेद न जान है जेता सुन तेता बखयान है साध के उम्मा ते गुण ते दूर साध की उम्मा दे भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊजते ऊची साध की शोभा मूजते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक सबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के जिस समान जैसे राजलंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जी एक जो मुसदा को खोदे को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए पर घास जैसे तारे ऊपरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पहया ब्रह्म ज्ञानी सदा समधरसी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत भरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी की ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सफला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जबे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम उधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ पागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी के सगल मानवाहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाकर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उतारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निम्ख निम्ख ठाकर नमस्कार है नानक वो अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी विद्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर तेरा रूप न पेखे नेतर साधु टहल सन संघेत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हर है मन की बात न मन ते टर है इंद्री जित पंच दुख ते रह नानक कोट मधे को ऐसा परस
वैष्णव सो जिस ऊपर सो परसाना, विष्णु की माया ते हुए पहना, कर्म करतो वे नेह कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचा, केवल पद कीर्तन संग्राचा, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सभी ऊपर होवत कृपाल, आप जड़े अवरा नाम जपावै, नानको वैष्णव परम गद पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते मन से सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सात संग पापा मल खोवे, तिस पुरी मल उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे निधनीत, मन तन अर्पे विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध, राम नाम आत्म में शुद्ध, राम नाम सारस पीसवे, उस पंडित के उपदेश जाग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वे प्राण सिमृत पूजे मूल, सुखम में जाने असूल, क्यों वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा दे, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतार है, पस प्रेत मूल पाथर को तार है, सर्व रोग का औक्ष नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू युद्ध के देना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखे हाथ और कर्म, जिसके मन प्राण ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म रब्द नजरी आया, दास संतन पायतन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगा परमान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पर है, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म ही तावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हरक तैसा उसोग, सदा नंत नहीं वियोग, तैसा सुन तैसी उस माटी, तैसा मन तैसी भिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा रजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जिस जिस घर रखे तैसा दिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावे सोई भुन होग, पसर आप हो नंतरंग, लखन जाए पार ब्रह्म के रंग, जैसी मध्य तैसा प्रगाश, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पार हावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन पर मैं उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नव धन नाम ते आवै, नानक करते का अंत न पावै, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट पे गातम निकोर, कई कोट पर दर्व गहिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम वाहे, कई कोट परदेश परमाए, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सज्जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बेसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्य सूर निक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सुतारे, नानक जिस दिस पावे, तिस तिस निस्तारे, कई कोट राज तामस साधक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शासत, कई कोट किए रत्न समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण दीवे, कई कोट जा किन्नर प्रसाद, कई कोट भूत पे सुकर मृगाज, सब ते ने सब हूते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मर है, कई कोट भोजोनी फिर है, कई कोट बैठ दी खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तै तै राख, नानक सागर पपके हाथ है,
कई कोट पै बहरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म में पर ब्रह्म लहनते कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिनको मिलियो प्रभु अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पर ब्रह्म तिन लग हरंग जिनको हो आप सो प्रसन्न नानक दे जन सदा धन धन कई कोट खानी हर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जो दुखीनो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने भवपात प्रभु ते हो ब्रह्म समात ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभु सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेदरे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सह सुमाव है अपने जन को सा सा सुमार नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक।

जिसके अंतराज उमान सो नरकपाती होत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होत विशाखा जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन परमावे तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगे सुख पावै तनवंता होय कर कर भावै तिन समान कर संग न जावै बहु लश्कर मनुख उपर करे आस पल पीतर ताका होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे मान सो जन नानक दरगाह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले फिर तारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे दरगाह को कैसे गावे आप आपस को जो पला कहावे तिसे पला ही निकट नहावे सर्व की रेन जाका मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ये जाने मैं किश करता तब लव गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म रह देह से जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छुटे सहस कटे लाको उठता वै त्रिपत ना आवे माया पाशे पावे अनक भोग बिखया के करै नहीं त्रिपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोर बिरथे सब काज नाम रंग सर्व सुख होए पटपागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दिश कर तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो कुछ किनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे विवेक आपेक आपे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सादी रिया समाए आप उपदेशे समझे आपे रजिया सबके साथ आप किनो आपन विस्तार सब किश उसका वो करने हार उस ते भिन्न कहो किश होए थान थनंतर एक कैसोए अपने चल तब करने हार कौत करे रंग पार मन में अमन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने बखयानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन बिरले चीना पला पला पला तेरा रूप अत सुंदर उपार।

तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खिलप करने हार, दूसर कौन कहे बेचार, जिसनु कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़पागी नानक जन से। श्लोक तजो सियानब सुर जनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए। अष्टवदी मानो कीटक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अकाए, बौर न दिसना लागे आए, मारे रखे एक को आप, मानुख के किस ना ही हाथ, तिसका हुकुम भू सुख होए, तिसका नाम रखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस मन में कर निंकार, कर मन मेरे सत विहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कह लह जियो, नानो पेग ठगर का रंग, सात संग बिन से सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सर्वण हर कथा, हर दरगा नानक उज्जल मथा, बड़भागी दे जन जग महाय, सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तक मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, इत उतुकी यो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तसे निरंजन जानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपने अब सूझे, तिसकी जानो तिस ना बूझे, सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते हर जन रहत, अंधन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर पर मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जो प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दिष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बूझिया, जब देखूं तब सब किश मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न कहे जन्म है न किश मरे, आपन चल।

नाना चलत करे खिनवाए, पूरयो पूरन सब ठाए, नाना मिल कर बंद बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरियां सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन, कर कृपा अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब मह समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बजाय तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत भजन साधु उपदेश, सत ते जन जागे हृदय प्रवेश, सत नित पूजे जे कोय, नाम जब ताकि गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जानी अपनी मित गत, जिसकी शिष्य करने हार, और न भूज करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भाव है सो भरतिया, विस्मन विस्म भय विस्महाद, जन बूझा तिसे आया।

0: बार बार प्रभ जपिए पी अमृत ये मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके अवर नाहीं दिष्ट आया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रह जो जंत बतान मन तन नामे नाम समान उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन के सदकाम बोलो जह जे बाद निरात प्रभ अपने जन की नींदात करे पाक भगत आत्म के चाहे प्रभ अपने सो रहे समाए जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पै प्रभ से हजूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्वथोग का दाता तिसकी सरन सर्व सुख पाव है तिसके दर सब पाव मिटाव है अवर सियान बसगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाव तिसके संग सिख उदरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुरु सिखी करे प्रतपाल सेवक हो गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख बंधन काटै गुर का सिख बेकार ते हटै सतगुरु सिख को नाम तन दे गुर का सिख वडपागी हे सतगुरु सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारै गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आग्या मन मै सहै आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन बीचै सतगुर कै पास ते सेवक के कार जरास सेवा करत होए नह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाब करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंगराता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सह सियान बलया ना जाइए नान कैसा गुरबड़ भागी पाइए सफल दर्शन बेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर बचन करन आकाने मन संतोख आत्म पदयाने पूरा गुर अखियो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाई नानक जिस भावे तिस लय मिलाए जेबा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सदगुरे अपने नानक जिस पर साध है सा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमृत सो होए उस पुरखा नाही कदे विनास जाके मन प्रगटे गुणदास आठ पहर हर का नाम ले सच

मन तन अंतर एही सवाओ, नेत्रों पेख दर्शक होए, मन बिकसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को उपावै संग, एक बस्त दी जय करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही ना जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वछल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदपुर कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी सरन पुरख भगवान,

के नाम की कथा मन भाई, भो भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास लोक, सरगुण निर्ग

फिर जाप अष्टपदी। जब आकार एहो काशना दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरख सो कहो किसै व्यापत। जब आपन आप आपार ब्रह्म, तब मोह कहां किस होवत भरम। आपन खेल आवरती जा, नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बांद मुक्त कहो किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तरह, तब

निडर कवन कत डरै, आपन चरित आप कर निहार, नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बादे, आपन आप ही अचरजा, नानक अपन रूप आप ही उपरजा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल शिद्र लगत कहो कीस, जह जो स्वरूपे जो संग समावे, तह किसे भूख कवन त्रिवतावे, करन करावन करन हार, नान करते का नाही सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई, जय सर्व कला आप है परवीन, तह वेद कतेव कहा को चीन, जब आपन आप उर धारे, तो सगन अप सगन कहा बिचारे, जय आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप, जय अछल अशेद अभेद समाया, ऊहा किसे ब्यापत माया, आपस को आप है आदेश, तिहो गुण का नाही प्रवेश, जय एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय आपन आप दियारा, तह कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊचते ऊचा, नानक आपस को आप है पहुंचा, जह आप रचियो प्रपंच आकार, त्यो गुण मह कीनो विस्तार, पाप पुन तह भई कहावत, को नरक को सुर्ग मंछावत, आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पैपार, दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखियान, आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक एक है, जह अवगत भगत है आप, जह पसरे

दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जात सभावे ता सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जीव आप उजाए सच नाम सुई जन पाए सो समदर्शी तत कविता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जे की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक।

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साज साज सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस नित आगो तरंग संत जना की धूर मन मंग आव छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हर तन के पर लेहो भंडार नान गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लुक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नान कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आ मिलाए मिट गए बैर भई सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो

साहिब जी सुखदाता पै पंजनो तिसे आगे कर अरदास मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास गुरपुरा जिन सिमरिया से पै निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रासो कहो टल गुर सेवी है एहनस सहज सुभाए दर्शन परस्या गुरु कै जन्म मरण दुह जाए सतनाम धन वाहिगुरु जी तनासरी महला पंजवां तुम दाते ठाकर प्रत पालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रत पालो हम बारक तुम रे तारे तुम दाते ठाकर प्रत पालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रत पालो हम बारक तुम रे तारे जेवा एक कमन गुण कही है बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कन्ही लिए रहाओ कोड़ बराद हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलपत मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले

तुम्ही सजण सुहेल राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सत्संग जी सभा जी रबा पार बख्श रहमत हो शामा दे दीवान दी हाजरियां भरिया ने नितने की बाणी सुध रह साहब के पाठ तो उपरंत ढिलों परिवार को सदगुण खुशियां बख्शिया ने। काका हरमन सिंह का आनंद कार्ज आरंभ किए जा रहे हैं प्रोग्राम। सो शुकराने वजो बच्चे के आने वाले जीवन दुशियां की जाचना के सारे कार्यों की संपूर्ण सफलता की जाचना करद हो परिवार को सुखमनी साहब के पाठ आरंभ किए गए संपूर्णता सहित उपरंत नंद साहब की छे पौड़ियों के जाप उपरंत अरदास हुई है। गुरु चरणा में सतगुरु ने पवित्र हुक्मनामे बख्शे जो आप श्रद्धा ने सरवण किए ने। गुरु कृपा करे रहमत करे परिवार को बच्चे के नाद कार्य दियाँ बहुत बहुत बधाई और गुरु कृपा करे सारे कार्य सतगुरु आग सब साहिब को संपूर्ण कर परिवार को तो बच्चे खुशियां भरा जीवन बख्शे निहाल कर। सो परिवार वालों कीर्तन गुरु के लंगर की सेवा भी है। इस तरह पिंड कुराली जलंधर समूह सज्जन मित्र दोस्तों वालों अते संत बाबा प्रेम सिंह मराले वाले दे समूह सरदालू परिवारों वालों खंड पाठ आरंभ ने। ऐतवार को भोग पैणगे सब नूं बेनती तीन दिन दर्शन ने उन्हां वालों भी गुरु के लंगर की सेवा हो रही है। आ दिहाड़े 1984 के घल्लूकारे नूं समर्पण ने। गुरु कृपा करे उन्हां शहीदां की याद साढ़े हिरदियां विच वसे। सो आओ शामां दे दीवान की रंभता भाई साहिब भाई दलबाग सिंह दा जथा कीर्तन सरवण करनगे 8:20 तक दीवान सिंह उस तों बाद अरदास होएगी। वाहिगुरु जी का खालसा। इस तरह बड़वाल परिवार वालों माता की याद में कीर्तन और गुरु के लंगर की सेवा हो रही है। परिवार वालों बेनती है सब ने लंगर छकन की कृपालता करनी जी। आओ श्रवण करिए कीर्तन।

तुम ही सज्जन सुहेले, राखो रखनहार दयाला, नानक करके गोले। वाहिगुरु जी, कबीर नैन निहारो तुझको, श्रवण सुनो तो नाऊ, बैन उच्चरों तो नाम जी,

जुगो जुग टल, शतर चबर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु। बाणी के बोहे थमरत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत। साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी मुबारक पवित्र हजूरी विच शामा वेले दे सज्जे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, बड़ी बख्शिश गुरुदेव ने कीती है आप सब। मेरे तो पहलां गुरु घर के रागी सिंघां पासों अमृतमई बाणी दे कीर्तन सरवण कर रहे सी। आओ कुछ कु समय लई मनोबिरतियां नूं एकागर करदिआं लड़ीवार चल रहे भगत कबीर साहब जी दे पावन श्लोकां दी विचार दे नाल जुड़न दा यतन करिए। तो सात संगत जिन्ने श्री आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां विच मीडिया दे माध्यम राहीं सरवण कर रहे हो, आओ आपस विच फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दो श्लोकां दा पाठ मैं आप जी दे नाल सांझा कीता है। 119 नंबर श्लोक अते 120 नंबर श्लोक। कबीर साहब श्लोकां दी इस लड़ी दे विच ये कहिंदे ने भी अकाल पुरख वाहिगुरु संसार मोह दे नाल बज्जा होया है, मोह दी जेवरी दे नाल बद्धा है। जिवें आपां कल इहनूं विचारिया सी, कबीर जग बांधे हो जे जेवरी, जिहड़ियां रस्सियां दे नाल संसार बद्धा है तूं उहदे नाल अपने आप नूं बन्नना। सियाणियां दे आम मुहावरे सी भी जे एक ने फाह लै लिया है जरूरी थोड़ा भी सारिआं ने फाह लैणा है, पर बहुती वार ऐसा वापरदा है। सतगुरु की बाणी कहती है भी देखा देखी सब करें, जिमें एक बंदा करता है ओनू वेख के किसी दूजे ने कोई गल शुरू की, तीजे ने कर ली, चौथे ने कर ली, पंजवें ने चौं जाणियां नूं वेख के कर ली, छेवें ने छिया जाणियां नूं वेख के कर ली। ते महाराज कहिंदे ने बुझ दा कोई विरला है, समझ दा कोई विरला है। भी जे एक बंदा वो काम कर लग पिया, दो कर लग पे, चार कर लग पे, एक वो दौड़ दौड़न लग पिया, दूजा भी दौड़ उस पिछे पै गया, ते लोग उन्हां वल वेख के ही दौड़ी जांदे ने। हुण इदां ही मोह दी जेवरी है, आखिर संसार इस जेवरी दे नाल बद्धा होया है, तू क्यों बन्या है, तू अपने आप नूं बन्न ना, अपने आप नूं आजाद कर। ये वेख मोह दियां तंदां दे नाल जुड़े हुए किन्ने दुख भोगदे ने। मोह किसी चीज का भी हो सकता है, शरीर नाल मोह हो सकता है, धन दौलत जायदाद जिहड़ी चीज बिनसन वाली है उहदे नाल मोह हो सकता है। मोह दा अर्थ ही यह हुंदा है अटैचमेंट जिहनूं आपां कहिंदे आ, जुड़ जाना किसी चीज नाल धुर अंदर तक, उहनूं मोह कहा जांदा। ते ये मोह जिहड़ा है ऐसी मत उत्ते कह लो भी पड़दा पा दिंदा है, मत नूं ऐसा तबाह करदा है। बंदा ये नहीं जाणदा, इस गल नूं भुला दिंदा है भी ये चीज बिनसन आ रहा है, मोह पड़दा ही ऐसा पा दिंदा है। मतलब किसी भी चीज नूं मोह जिहड़ा है वह थिर रहण वाली समझ लैंदा है। गुरुदेव महाराज ने आख्या जग उस जेवरी का बद्धा होया है, मोह का सताया होया है, तू उन्हां वल वेख के अपने आप नूं बन्नी ना। वेखो एक गल बड़ी स्पष्ट है भी जे जेलां सोने दियां भी होण ते जेलां ही हुंदियां ने, उहदे बारे कोई तर्क कोई दलील नहीं दित्ती जा सकती।

राखो राखण हार दयाला, नानक करके गुले, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गुरु साहब जी दे मुबारक चरणों के विच सजे हुए साहबां दे आलमाना दरबार दियां हाजरियां पर रही जुड़मिल बैठी माणयोग साध संगत, बड़भागे हो, हाजरियां पर रहे हो, धन्यवाद है। गुरु सवारे सतकार ढाडी जथेदार आप जी ने ढाडी वारा गुर इतिहास सरवण करवा रहे सन। गुरु चरणों के विच दीवान की समाप्ति की अरदास हुई है। पवित्र मुख वाहगुरु साहब जी ने बख्शिया है जो शहीदां दे सरताज पंचम गुरदेव सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज तिन्हां दी मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया मुबारक शब्द आप जी ने सरवण किया है। हजूर बख्शिश कर बख्शा होया पावन उपदेश साडे जीवन का आधार बने, ये गुरु चरणों में अरदास है और ये नाल ही सजी हुई दीवान की समाप्ति है, संपूर्णता है। तो दो श्री अखंड पाठ साहिबान की सेवा संगत वालों चल रही है नगर कुराली, तो समूह मित्र परिवारों वालों जिथे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवाए गए हैं उसे नगर भलत दियां संगतों वालों श्रीमान बाबा प्रेम सिंह जी मराले वाले उन्होंने याद मनाउंदिया होया उन्हां दी याद विच श्री अखंड पाठ साहब संगत वालों आरंभ करवाया गया। आरंभ किए हुए अखंड पाठ साहब के भोग परसों नूं पाए जाने, लगभग 9:30 बजे हफ्तावारी समागम सजणगे। तिने दिन आप जी ने हाजरियां भर के दर्शन दीदारे बख्शिश करने, सरवण करके लाहे प्राप्त करने तो आओ, ये ही दवान की संपूर्णता है। तो आप जी को बेनती है गुरबाणी सुन दियाँ चावन संगत हाल नंबर 2 दे विच, हाल नंबर 3 दे विच श्री अखंड पाठ साहब चल रहे हैं, उत्थे बैठ के आप जी गुरबाणी पाठ सरवण कर सकते हो। हुण सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र सरूप के सुखासन की सेवा होएगी और नाल दी नाल सोहला बाणी का पाठ होगा। गुरु साहब जी ने जिस स्थानों वाल जाएंगे उपरंत आप सारे ने गुरु चरणों में खुशी प्राप्त करने, सबना का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहब जी। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, जयकर कीर्ति आखी है करते का होई विचारो, तितकर गावो सोहला, सिबरियो सज्जन हारो तुम गावो मेरे निरभाउ का सोहला, हमारी जे सोहला।

सब चाहे हर जियो तेरो नाउ। गुर प्रसाद को विरला पावे जिन को लाट लिखिया तुर पाओ जाप मन नामे। जाप मन रामे नाम हर जसी उत्तम काम जो गावे सुनहे तेरा जस स्वामी। हौ तिन कै सद बलिहार जाओ रहाओ। शरणागत प्रद

चौथा सेवक सिख पूजन सब आवहे सब गावहे हर हर उत्तम बाणी गावया सुनया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। बोलो भाई हर कीर्त भव जल तीर्थ हर दर दिन की उत्तम बात है संत हो हर कथा जिन जन हो जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे हर आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्यागो हर पानी। तनासरी महला चौथा।

कीरत कर हे सगल जन तेरी, तुम बनासी पुरख मुरारी, ज्यों पावे त्यों रखो स्वामी जन नानक शरण द्वारी। तनासरी महला पंजवा, बिन जल प्राण तजे है मीना, ज्यों जल स्यों हेत बढ़ाइयो। कमल हेत बिन स्यों है भवरा, उन मार्ग निकस ना पायो। अब मन एकस स्यों मोह कीना, मरै न जावे सद ही संगे, सतगुर शब्दी चीना रहाओ। काम हेत कुंचर लै फांके, ओह परवस पयो विचारा, नाद हेत सिर डारियो कोरंका, उस ही हेत बिधारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया कौ लपटाना, आतरच्यो कर ली नोय अपना, उन छूट सरापर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, हो जानो सदा दोहेला, कहो नानक गुरे है बुझायो, प्रीत प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवा, कर कृपा दियो मोहे नामा, बंधन ते छुटकाए, मन ते बिसरियो सगलो तंदा, गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बिरानी छाडी, अहम बुद्ध मोह मन बासन, दे कर गढ़हा गाडी रहाओ। ना को मेरा दुश्मन रहया, ना हम किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसारियो पीतर, सतगुर ते सोजी पाई।

पूर्ण हुए त्रिपतानी। हुए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बेलानी। अलंकार मिल थैली होई है, ताते कनक बखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बाणी। कहो नानक नेह चल कर भांदेओ, उंगर कियो बंदानी। तनासरी महला पंजवा। वड़े वड़े राजन यर भूमन, ताकि त्रिशन ना बूजी। लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु ना सूजी। बिखिया मैं है किन्ही तृप्त न पाई, ज्यों पाव की तन नहीं त्रापै, बिन हर कहां अघाई रहाऊ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटै न भूखा। उद्यम करै स्वान

चुके। दिन प्रत करे करे पछुतापे, सोग लोभ में सुके। हर हर नामे पर मूला, अमृत एक निदाना। सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। नासरी महला पंजवा, लवै न लागन कहू है कछुए, जाको फिरे तहावे। जाको गुर दीनो हे अमृत, तिस ही कौ बन आवे।

चंदन ले बहुत देह को सुख कर तब पसम संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बिखै ठगौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी सुजुग मह पवित्त पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बद रह जीत। जन्म जन्म के किल बिख दुख भागे गुरु ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकस्यो।

छूटे बिन सजाए परमाई, आनंद रूप रवेओ सब मद्दे, जत कत पेखों हो जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतित पावन गोसाई, कोट सुख आनंद संतन कै।

हे जंत विचारा। प्रभ की ओट गही तो छूटो, साध प्रसाद हर हर गाए। बिखे ब्याद तब हुटो रहाऊं।

अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस कृपैन साध संग रंग प्रभ भेटे नानक सुख जन रैन तनासरी महला पंजवा। बंधन ते छुटकावै प्रभु मिलावै हर हर नाम सुनावै स्थिर करे निह चले मनुआ बहुर ना कतहु तहावै।

नानक शरण भरियो दुख भंजन गुण गावे सदाय पार नंदक का मुख काला हुआ दिन दुनिया कै दरबार तनासरी महला पंजवा अब हर राखन हार चितारिया पतित पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बेदारिया रहाओ गोष्ट पई साध कै संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेण पंच नित नानक पुनहा पुनहा बलिहारिया तनासरी महला पंजवा।

तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरवान, आठ पहर प्रभ कौ आराधी। नानक सद कुरबान, तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाँ हाँ प्रभ राख ले हो, हम ते कुछु ना होए, मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम देहो रहाओ। अगन कुटां बसा कर संसार, भरम मोह ज्ञान अंधार, ऊंच नीच सुख दुख त्रापस नाही, तृष्णा भूख मन बासना, रच बिखै ब्याद, पंच दूत संग महाया साध।

जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करे विचार। मुकत पाई है साध संगत बिन सजाए अंधार।

दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म धर्म सगलाई खोवे। हुक्म न बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछों ताने। जोत भावे सो परवान, तेरे फाने नो कुर्बान।

जिनके जीत नहीं फेरे आपे भया सहाई। अचर्ज किया करने हारे नानक सच वडियाई। दनासरी महला पंजवां घर छेवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो। हर बिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारन तार हर अवर जंजाल। तेरे काहू न काम जियो। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा। ए उपदेश मोको गुरदीना जियो।

देखो पसार नैन सुनहो साधु के बैन, प्राण पद जित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेकै, बिखिया बिकार देख सगल है फीके। एक गोबिंद को नाम नीको कहत है साध जान। तन धन आपन थाप्यो, हर जपना निमख जाप्यो। अर्थ दर्ब देख कस संग नाहीं चलना, जा कोरे कर्म भला तिन ओट गही संत पला। तिन नाहीं रे जम संता वै साधु की संगना।

काल कलेश लोभ मोह महाबहो जल तारे रहाओ। सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जापन संग मन निधान तारे। चरण कमल नम

आन त्याग भय कया सर शरण शरण कर आए। संतन ग्रहो पहे मा निर्मल नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा आत्म।

जन के चरण वसे में रही रे संग पुनीता देही जन की तुहूर देहो कृपा निद नानक कै सुखे ही तनासरी महला पंजवा जतन करे मानुख डहकावे

जब लग तुटे नाही मन भरमा, तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा। नाम गुरु दियो है अपने, जाके मस्तक करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे, ताका जुग में है धर्मा। जन को नाम वडाई सोब, नामो गात नामो पत, जन की माने जो जो हो ग्रहाओ।

तन्यवान नितर पुनीत पय दर्श पेखे माथे परोरवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोर हृदय बसहों गोपाल।

मुरार सहाय हो दास को कर गए उधर हो मीत रहाओ। सुनी बेनंती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप। नानक नंद भये दुख भागे सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा। चतुर दिशा कीनो बले अपना सिर ऊपर कर धारियो। कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिधारियो।

काल सर्ब मनोरथ राजसुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करत नानक जन के पूर्ण काम।

रहाओ जा जद को तैत स्वामी कोहे ना पहुंचन हार। जो जो करे अवज्ञा जन की हुए गया तत्सार। करण हार रखवाला हो आजा का अंत ना पारावार। नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काने मार। तनाथरी महला पंजमा घर नौमा पड़ताल एको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हर चरण सरण गोविंद दुख भंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर तारो। पूजा गह कूप ते काड लेवो। रहाऊ

पांडे घत ना एह टुटे ना मन लगे ना एह जले ना जा धन सुमन से नानका जोगल चले पा चौकड़ मुलना आया बे चौके पाया

दुख कोई न जाने तुमरा अंत उचेते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुमते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा बोलना जी सतनाम वाहिगुरु एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासें हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरे घर नौ निदे आवे ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा वाहगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दे दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता अकाल पुरख धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज
आप जी का कुटान कुटान शुकराना आप जी ने बख्शिश रहमत कीती अमृत वेले दर्शन दिदारे बख्श के संगतां नूं निहाल कीता आप जी की पावन हजूरी विच दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच आप जी की इलाही बाणी आसा की वार दे कीर्तन हुए सतगुरु जी बाणी पढ़दियां हुईयां भुल्लां दी खिमा बख्शनी अगे तो समत बख्शनी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दाराई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा संगत दियां तिल फुल भेटावां सेवावां दर ते प्रवान करनियां सभनां नूं चढ़दियां कला तंदुरुस्तियां बख्शनियां सतगुरु जी आप जी दे दर घर दे सेवक परिवारां वल्लों नगर कुराली जलंधर दियां संगतां वल्लों समूह रिश्तेदार साख संबंधियां दोस्तां मित्रां वल्लों रल मिल के आप जी की तुरकी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब कल रोज तो प्रारंभ करवाए गए इसे तरह बाबा प्रेम सिंह मुराले वालियां दी याद विच समूह संगतां वल्लों इलाका निवासियां वल्लों कल रोज तो श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए गए सतगुरु जी आप जी ने मेहर करनी समूह नगरां दे सिर उत्ते मेहर भरिया हथ रखना समूह परिवारां दे सिर उत्ते मेहर भरिया हथ रखना तां दुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शणियां बाणी शुद्ध स्पष्ट पढ़न दी पाठी सिंघां नूं मत बुद्ध बख्शणी संगतां नूं सेवा करनी दे उद्दम बल बख्शणे समूह परिवारां विच आपसी एकता इतफाक प्रेम भरोसे दीआं दातां बख्शणियां सतगुरु जी इस वेले आप जी के हजूर समूह संगतां वल्लों नगर कुराली जिला जलंधर दीआं संगतां वल्लों बाबा प्रेम सिंह मुराले वालियां दी याद विच समूह संगतां वल्लों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है दर ते प्रवान होवे करो कृपा अपने इलाही फरमान बख्श के कृतार्थ करो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्हां

ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हार मेरी, कोट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो।

सतगुरु महाराज ने आख्या मत को जाने जाए अगे पाए सी। ये गल्लां कोई अगे दियां नहीं, इत्थे निरणा दे देना गुरु ने। जे हे कर्म कमाए ते हा होए सी, जिदा दे कर्म करेगा उदा दा रिजल्ट मिलेगा। अमृत हर का नाऊ आप वरताए सी, अमृत रब दा नां है, वह आप वरतौंदा है। ते जिन्ना ने इस अमृत नाम नू ग्रहण कर लिया चलिया पत सिओ जन्म सवार, वो इज्जत वाला हो गया, वह पत वाला हो गया, उन्हें अपने जन्म नू सवार लिया। वैसे तो बहुत सारे ऐसे ने जिहड़े पत वाले इज्जत का ढंडोरा पटा लेंदे ने, आपां वी कहिंदे जी असीं इज्जत वाले हाँ, वह इज्जत झूठी जी हुंदी है, फोकी जी इज्जत हुंदी है, उहदा कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह इज्जत तुहाडी डिपेंड है किसी चीज़ उत्ते। ते जिहड़ा गुरु इज्जत दिंदा है, सारी दुनिया एक पासे ते गुरु वल्लों दित्ती हुई इज्जत एक पासे, दुनिया की वो इज्जत मिट्टी है, खा के उहदा कोई मुल नहीं है, असीं उहदे पिछे भजे फिरदे। तुसीं आम वेखो अज रौले खाधे ने, वह फलाना बंदा मेरी इज्जत नहीं करता, तू क्यों ये दौड़ तेनूं चाहीदी क्यों है, क्यों तू अपने नेक राह उत्ते चल, कोई इज्जत करे कोई बेपत करे की फर्क पैंदा इहदे नाल, फलाने बंदे ने मैनूं सलाम नहीं कीती दुआ नहीं कीती, तू चाहना क्यों है, गल क्यों दुखी हो रहा, नहीं कीती ठीक है वो आपदे राह, तू आपदे राह, तू दुनिया च सलामा लैण आया लोगों दीआं, तू लोगों दीआं सलामा लैण आया। सो सतगुरु ने आख्या जिहदे अंदर गुरु की विचार का अमृत वरसदा है वह पातला हो जाता, चलिया पत सिओ जन्म सवार, वाजा वाई सी, वाजा वाई सी का मतलब वह डंका वजदा। फिर कबीर की किन्नी इज्जत की है, लोग कहें कबीर बराना, वो इज्जत किन्ने की, उन्होंने इज्जत की भुख भी नहीं सी। अज कबीर का जंग डंका जान च वज रहा, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है शतर तरे। सो असी भजदे हाँ इज्जतों के पिछे, चलिया पत सिओ जन्म सवार, वाजा वाई सी। बाबे ने कहा मानस क्या विचारा, ते तिना लोगों में उहदा डंका वजा, नानक आप निहाल, वह आप निहाल हो गया गुरु की मत लैके, सब कुल तार सी उन्हें अपनिया कुलां तार लिया, गुरु कृपा करे। आओ अगले समय लई भाई जसविंदर सिंह होणा दे जथे पासों रब्बी बाणी दे कीर्तन सरवण करो। दो परिवारों वालों श्री नगर निवासियों वालों श्री अखंड पाठ साहब चल रहे ने, सो आप संगत नूं बेनती है कल नूं भोग पैणगे, हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

शुभमो बिरसि जाय हमेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति अमृत खाहें, तिस ठाकुर को रख मन माहें। जे प्रसाद सुगंधर तन लावें, तिसको सिमरत परम गत पावें। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे त्याई सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरु तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावें, तिसै त्या कतबर लुभावें। जे प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जिह प्रसाद तू सब को मरने, मुक्तां को जस रसन बखाने। जिह प्रसाद तेरु रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जब दरगाह मन पावे, नानक पासे ती कर जावे। जिह प्रसाद आरू कंचन देही, लिव लावत सराम स्नेही। जिह प्रसाद तेरा उल्ला रह, तू मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन शरणी पर ठाकुर प्रभु ताके। जिह प्रसाद तुझ को न पहुंचे, मन सास सास सिमरु प्रभु चे। जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहि, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद भूखन पैरी जय, मन तिस सिमरत क्यों वार सकी जय। जिह प्रसाद अश्व हस्त सवारी, मन तिस प्रभु को कभू न बसारी। जिह प्रसाद बाग मिलक तना, राख परोए प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत सहत्याई। तिसहत्याई जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रख है। जे प्रसाद करें पुन बोदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभु को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सुप्रभ सिमरु सदा रूप। जे प्रसाद तेरी निकी जार, सुप्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने करनार, जे प्रसाद पीखे बिस्मार। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलें, जे प्रसाद संपूर्ण फलें। जे प्रसाद परमगत पावें, जे प्रसाद सुख सहज समावें। ऐसा प्रभ त्याग अबरकत लागू, गुर प्रसाद नानक मन जागू। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रिमन मूर्त ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साच, रिमन मेरे तू ता स्योराज। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सुनाओ, आप गवाए सुहर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगाश, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी मया, अपहु कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लग

जो जो कह सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिन मंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी सार के संग मुकुजल होर, साध संग मल सगली खोर, सार के संग मिटाय अभिमान, सार के संग प्रकटक सुज्ञान, सार के संग बुझे प्रमलीरा, साध संग सब होत नबीरा, सार के संग पाए नाम रतन, सार के संग एक ऊपर जतन, सार की महिमा वर्ण कौन पराणी नान, सार की शोभा ब्रह्मा सुमानी, सार के संग अगोचर मिलय, सार के संग सदा प्रफुलय, सार के संग अवय बसवंचा, सार संग अमृत रस पुंचा, साध संग होय सबकी रेन, सार के संग मनोहर बैन, सार के संग नकत हूं तावे, साध संग स्थित मन पावे, सार के संग माया ते भिन्न, सार संग नानक प्रभु सो प्रसन्न, सार संग दुश्मन समीत, साधु के संग महापुनीत, साध संग किस्यों नहीं बैर, सार के संग ना बींगा पैर, सार के संग ना ही को मंदा, सार संग जाने परमानंदा, सार के संग ना ही हो ताप, सार के संग तजै सवाप, आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बनयाई, सार के संग न कब हूं तावे, सार के संग सदा सुख पावे, सार संग बस गोचर लह, साधु के संग अजर सह, सार के संग बस है थानु चै, साधु के संग महल पहुंचे, सार के संग दृढ़ सब धर्म, सार के संग केवल पार ब्रह्म, सार के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान, सार के संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटाम निस्तार है, साधु के संग सूतन पावे, जिस नंति सब को बरसावे, साध संग धर्म राय करी सेवा, सार के संग शोभा सुर देवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, सार के संग सर्ब थान गम, नानक सार के संग सफल जन्म, सार के संग नहीं कश काल, दर्शन भेटत होत निहाल, सार के संग कलूकत हरे, सार के संग नरक पर हरे, सार के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, सार के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध हृदय बसे, नानक उदरे साध सुनर सह, सार के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, सार के संग न मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, सार के संग लगे परम बीठा, साधु के संकट का डीठा, साध संग पाए आज्ञाकारी, साध संगत पाई हमारी, सार के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जीता सुन है तेता बकियानै, सार की उपमा ते गुण ते दूर, सार की उपमा रही भरपूर, सार की शोभा का नहीं अंत, सार की शोभा सदा बेअंत, सार की शोभा ऊंच ते ऊंची, सार की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लग तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, ज्यो बसुदा को खोदै को चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यो पावक का सही सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लगै जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुई प्रकाश, जैसे धरि उपरि आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाहीं अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर भिखारियो माहा, ब्रह्म ज्ञानी का नाहीं धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसारु, ब्रह्म ज्ञानी कै इक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी कै नहीं विनाश,
ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभा, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय दयाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक उर तारे जो अंतर नामा, सर्व में पीख है भगवाना, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक को अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रस न परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, परत्रय रूप न पीख है नेत्र, साध की टल संत संग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बासना मन ते टरे, इंद्री चित पंच दोखते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा है पारस, वैष्णो सो जिसु परसो प्रसन्न, बिशन की माया ते होए भिन्न, कर्म करत होए ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बांचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सभी ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरा नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म, सार संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रभु दे राम नाम, आत्म में सोदे राम नाम, सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, सूखम मैं जाने स्थूल, चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौं वर्णा में जपै को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतरि उर तारे, पश प्रेत मुग्ध पाथर को तारे, सर्व रोग का यो खद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित न पाइये, धर्म नानक तिस मिले, जिस लिखिया तुर करम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास ते संतन पाए तन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगाह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म है तावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाव, जित जित कर रख तैसा तिनाओ, आपे करण करा मन जोग, प्रभावै सोई फुण होग, पसरे आप होयन तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा परगाश, पार ब्रह्म करता अविनाश।

श्लोक उस्तत कर हैं अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रवरची बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट मन ब्रह्म उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत ना पावे। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट भिगात मन कोर, कई कोट पर दर्ब को है रहे, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माया शर्मा है, कई कोट प्रदेश परमा है, जित जित लावो तित तित लगना। नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देशभू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सात है, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त, कई कोट की रत्न संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंद, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जक्ष किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाश, सब ते नीरा सब हूं ते दूर, नानक आप लिपतरया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरे, कई कोट बहु जोनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहें, कई कोट कालें थक पाहें, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जहां जहां पाणा तह तह राखे, नानक सब कुछ प्रभु कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभु को खो जंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिलियो प्रभु विनाश, कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन को हुए आप सो प्रस्थान, नानक तेजन सदा धन धन, कई कोट खाणी यर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने भांत प्रवते हुए ब्रह्म है समान, ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगाश, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारै एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर भाए सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहज समावै, अपने जन को सास सास समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण करण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करना जोग, जुत पावे सोई हो, खिन में था प्यो था पनहारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे धारिया धर रहा वै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी बड़ियाई, नानक सब में रह समाई, प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ पावै बिन सास्ते राखै, प्रभ पावै ता हर गुण पाखै, प्रभ पावै ता पत्र उधारै, आप करै अपन बिचारै, दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर ना आवै, कहु मनुख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसकै हाथ होए ता सब कुछ लिए, ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानते अपने आप बचै, भरमे पूला दंद सतावै, निमुख माहे चार कुंड फिरियावै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जा का दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दंद प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीश, ताका लेखा ना गणै जगदीश, जीव पिण सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, अपनी बन दया बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष पावै सोई फुन थियो, कभू ऊंच नीच में बसै, कभू सोग हर खरंग हसै, कभू नंद चन व्यवहार, कभू उभ आकाश पयाल, कभू बीता ब्रह्म विचार, नानका मिलावन हार, कभू नृत करै बहु भांत, कभू सोई रहै दिन रात,
कभू महाक्रोध बिकराल, कभू सर्प की हो तरवाल, कभू होए बह बड़ राजा, कभू भिखारी नीच का साजा, कभू अब की रुत में आवे, कभू भला भला कहावे। ज्यों प्रभ राखे तिम ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मोन धारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जियान, जोन भरमै भरमिया नाना रूप, ज्यों सुवंगी दिखावे, ज्यों प्रभावे तिवें नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोई। कभू सार संग ते पावे उस स्थान ते, बौर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगाश, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन ना मरते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुर्बान। श्लोक सुखी बसै मसकीनिया, आप नवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बेष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बौजून परमावै, धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे, धनवंत आवे कर घर बावे, तृण समान कछ संग ना जावे। बो लश्कर मानो खूपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंद, किसे ना बदाय आप हंकारी, धर्म राय तिस करे खुवारी। गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे हो तारी, श्रम पावे सगली बिरथारी, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह को कैसी गवे, आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट ना आवे। सर्व की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोई, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इस को सुख नाहीं कोई। जाबे जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तक रह को बैरी मीर, तब लग नह चल नाहीं चीत, जब लग मोह मग्न संगमाई, तब लग धर्म राय दी सजाई। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हों छूटे, सहस खटे लख कोट तावे, तृप्त नावे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, ना तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को रज्जे, सुपन मनोरथ बिरथे सबका जय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए। करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करना हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप या प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबों के संग, बूझे देखे करे विवेक, आपै एक आपै अनेक, मरे न बिनसै आवै न जाए, नानक सदी रह समाए। आप उपदेश समझे आप आपे, रचिया सबके साथ, आप कीनो अपन विस्तार, सब कुछ उसका हो करने हार, उसते पिन कहो किश कोई, उसते पिन कहो किश होए, थान थनंतर एक सोए। अपने चलेते आप करने हार, कौतक कर रंग अपार, मन में अब मन अपने माहे, नानक कीमत कह ना जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी, सच सच सच सब कीना, कोट मधे किने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र।

संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हत्ते को रखे ना कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जी करे, नानक संत संग निंदक भी तरै। संत के दुखन ती मुख पवै, संतन के दुखन काग ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिग जोन करमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै, संत कै दुखन सब को छलै। संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए। संत दोखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओहि पी गत पाए। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दुख में दोख, नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत के दुखी को डान लग गए, संत के दुखी को सब त्याग। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी। संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख न सोखते टरे। संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पवै ता लय मिलाए। संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुंचै। संत के दुखी को उद्यान भरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए। संत का दुखी यंत्र ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीजा पे ही खाहे। संत के दुखी को अब न राखन हार, नानक संत पावै तां लए उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़ फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरै ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख ना त्रिष्टै कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए। पया करत ना भेटै कोई, नानक जाने सच्चा सोई। सब कर तिसकी ओ कर निहार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तर करो दिन रात, तिसे त्यावो सास ग्रास। सब कुछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे बिचार। जिसनों कृपा करे तैसे आप।

सो क्यों बिसरै जी जीवन जिया, सो कौ बिसरै जी अग्नि में राखै, गुरु प्रसाद को बिरला लाखै, सो कौ बिसरै जी बिकते काढ़ है, जन्म जन्म का टूटा गंढ है, गुर पूरे ताते है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अपना नाम जपावो, भगत पाए तरिये संसार, बिन भगती तन होसी सार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम, सगल दुख काहू हतनाश, नानक नाम जपो गुणता, सुपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर ही सुहाओ, नेत्रों पेख दर सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए, भक्त जिना कै मंत्र रंग, बिरला को पावे संग, एक बस दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही ना जाए, नानक रहा सर्व समाए, प्रभक्षण दीन दयाल, भगत बशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व घटा कर प्रतपाल, याद पुर कारण करतार, भक्त जिना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीचे जान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मोक पाई, एक निम कर के गुण गाई, अनक राज भोग बड़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देव निवास, सर्व सुख

आपे ही फिर जाप। अष्टपदी। जब आकार एक कश ना दृष्टिता, पाप पौन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सोग कहो किसे व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म, तब वो कहाँ किस होवत परम। आपन खेल या वर्ती जा, नानक करण हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त को किसको गनी। जब भी के हार या गम या पार, तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो के ठाई। जब आप आपे अपनी जोत धरै, तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चले ते आप करने हार, नानक ठाकुर या गम या पार। अविनाशी सुख अपनी आसन, तहां जन्म मरण को कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की तरास कहो के सोए। जब अवगत अगोचर प्रभ का, तब चित्तर गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन या गोचरे गा दे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही चर जा, नानक अपन रूप आप ही पर जा। जहां निर्मल पुरख पुरख पत होता, तहां बिन मैल कहो क्या तोता। जहां निरंजन निरंकार निर्वाण, तहां कौन को मान कौन अपमान। क्या स्वरूप केवल जगदीश, तहां शल शिद्र लगत को कीस। जहां जो स्वरूपी जो संग समावे, तहां किसे भूकम तृप्तावे। करण करावन करण हार, नानक करते का नाहीं शुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जहां सर्व कला या पेपर बीन, तहां वेद कतेब कहां कोचीन। जब अपने आप उतारे, तो शगन अप शगन कहां विचारे। जहां अपने ऊंचे अपने आप नीरा, तहां कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्मार, नानक अपनी गत जानो आप। जहां अषाढ़ अषेध भीत समाया, उहां किसे व्यापत माया। आपस को अपै देश, ते गुण का नाहीं प्रवेश। जहां एक है एक एक भगवंता, तहां कौन अचिंत किस लागे चिंता। जहां अपने आप या पतियारा, तहां कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंचे ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा। जहां आप रचि ऊपर पंचे आकार, ते गुण में कीनो विस्तार। पाप पौन तहां पई कहावत, को नरक को स्वर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह भरम पै भार। दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार की बखान। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक कीकै। जहां अवगत भगत आप, जहां पसरे पासार संत प्रताप। दूह पाका आपे धनी, उनकी शोभा उन्नो बनी। आपे कौतक करे आनंद चोज, आपे रस भोगण निरजोग। जिस पावे तसे आपन नाए लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे।

पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मांग। आप छोट बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। हर तन के पर ले हु पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद। नरक निवारे उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित मो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दा मोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमोलीक लाले रतन। सुनत कमावत होते उदार, आप तरह लोकहां निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लगा हर रंग। जय जय शब्द अनाहत वाजै, सुन सुन अनंत करे प्रगाजै। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक कुदरे तिनकै साथे। शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभाव मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेवियाल। जंजाल बेकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभुतारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभु की उस्तर करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुख मनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान। सर्व इच्छा तां की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए स्थान, वौर न होवे आवन जान। हर तन खड़ चलै जन सोई, नानक जिसे प्राप्त होई। खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तहां सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगाश, सबके मध्य सगल ति उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। ए फल तिस जन कै मुख भणे, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एह निदान जपै मन कोई, सब जुग में तां की गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक

संपट जित सत सर नावन, पावन पाती तृपत करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन भिद साहिब रवत रह। कहंदे कहें कहे कह जावें, तुम सारे अवर न कोई।

करै, जां छोड़ै अहंकार, आसा मनसा मारे निराश होए। गुर शब्दी विचार पौड़ी, जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई, आगै सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई। कुड़ियारा के मुंह फटकीए, सच भगत वड्याई, सच साहिब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई। जन नानक साचा राध्या, गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा, पूरे भाग सतगुरु पाई है, जे हर प्रभ बख्श करे, उपावा सिर उपाऊ है, नाओ प्राप्त होए अंदर।

कबहु मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलतर लक्ष्मी माया एह तजो जी जानी रे कहत कबीर सुनो रे संतो मिल है सारंग पानी रे बिलावल विद्या न परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सयानी मैं बौरा मैं बिगड़ियो बिगड़े अत औरा रहाओ आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो भ्रम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत खोए मेरे भरम भूलो मत कोई सो बोरा जो आप ना पछाने आप छाना तो एक है जाने अब है ना माता सो कब है ना माता कह कबीर रामै रंग राता बिलावल ग्रहे तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा

तुम्हारी रहाउ, बिखे बिखे की बासना तजहे न जाई, अनक जतन कर राखिए फिर फिर लपटाई, जरा जीवन जोबन गया किश किया नानिका, एहो जियरा निर्मोल को कोडी लग मीका, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी, तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी, बिलावल नित उठ कोरी गागर आने, लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे, हर हर रस लपटेओ हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई निपूते तब ते सुख ना पयो रहाओ, सुनो जिठानी सुनो देरानी अचरज एक पयो, सात सूद इन मुंडिये खोए एह मुंडियो क्यों ना मोयो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो, संत प्रहलाद की पैजन राखी हर नाखस नख बिदरियो, घर के देव पितर की छोडी गुर को शब्द लयो, कहत कबीर सगल पाप खंडन संत है लै उधरयो, बिलावल को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दे वाजा, रहाओ तेरो जन होए सोए कत डोले तीन भवन पर छाजा, हाथ बसार सकै को जन को बोल सकै ना अंदाजा, चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद वाजा, कह कबीर संसा ब्रह्म चूको ध्रुव प्रहलाद निवाजा, बिलावल राख लेओ हम ते बिगरी सील धर्म जब भगत न कीनी, हों अभिमान टेड पगरी, रहाओ अमर जान संची एकाया ए मिथ्या काची गगरी, जिन्हें निवास साज हम किए तिसे विसार अवर लगरी, संदक तोहे साध नहीं कहियो सरन परे तुमरी पगरी, कह कबीर ए बिनती सुनियो मत कालो जम की खबरी, बिलावल धर्मा देठा डे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार, रहाओ तुम तन धनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत सुज सुमार।

जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जंग रहे अखाए, नानक तिन जन लागै पाए, गौंड महला पंजवां, जा कै संग एहो मन निर्मल, जा कै

कर पाए सब धरन, जान के निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आड़ पैर जन एक ते आए, जमुआ ताके निकट ना जाए, जन नर वैर निंदक अहंकारी, जन फल माने निंदक बेकारी, गुर कै सिख सतगुरु ते आया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सात भजन वरतै हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए, नितरिया

हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे गौंड। आकाश गगन पताल गगन है, चौं दिस गगन रहाय ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम,

सेओ नाय जोगी ना अवतूता नाय समाये न काहू भूता या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत न को पाई रहाओ ना एहो गृही ना उदासी ना एहो राज ना भीख मंगासी ना

भोग विलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी रहाओ। सुहागन गल सोहै हार, संत को बिकसै संसार। कर सिगार बह पखियारी, संत की ठिटकी फिरै बिचारी। संत भाग ओ पाछै परै, गुर प्रसादी मार हों डरै।

कै साध रहाउ। जपिए नाम जपिए अन्न, अम्बै कै संग होई निका वन। अन्न बाहर जो नर खोवे, तीन भवन में अपनी खोवे। छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सुहागन ना ओरंड। जग में भगते दूधा थारी, गुबती खावे वटका सारी। अन्न बिना न हुए सुकाल, तजे अन्न न मिले गोपाल। कहो कबीर हम ऐसे जानिया, तन अनाद ठाकुर मन मानिया। राग गौंड बाणी नाम दियो जी की घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग इस नाने।

बापुरो नाम रहा जैसे गाय का बांछा छूटला थन चोखता माखल कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेट द अलख लखाया जैसे बिखे हे

हर हर करत मिटे सब भरमा, हर को नाम लै उत्तम धर्मा, हर हर करत जात कुल हरी, सो हर अंधले की ला करी, हरे नमस्ते हरे नम है, हर हर करत नहीं दुख जम है रहाओ, हर हर नाकस हरे प्राण, अजामल की उबकुंठ है थान, सुआ पड़ावत गन का तरी, सो हर नैनो की पुत्री, हर हर करत पूतना तरी, बाल घातनी कपटे भरी, सिमरन द्रोपत सुत उदरी, गौतम सती सिला निस्तरी, केसी कंस मथन जिन किया, जी दान काली को दिया, प्रणवै नामा ऐसो हरी, जा जबद पै अबदा टरी गौंड, पैरों भूत सीतला तावे, खर बाहन ओशार उड़ावे, हों तो एकर मैया लहो, आन दे बदलावन देहो रहाओ, शिव शिव करते जो नर त्यावे, बर्द चढ़े डौरू डमकावै।

हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। कबहू जियड़ा ओब चढ़त है कबू जाए पयाले लोभी जियड़ा थिर न रहत है चारे कुंडा पाले। मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला सर्व जो तेरी पसर रही जय जय देखा तह नरहरी। जीवन तलब निवार स्वामी अंध को माया मान गाडया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जय भीतर कट भीतर बसया बाहर काहे नाही तिन की सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्व रहा भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए।

पाले, आप तरह सगले कुल तारे। सो ओ तूत ऐसी मत पावे, ऐनस सुन समाज समावे रहाउ। भिखिया भाई भगत पै चले, हुवे सो तृप्त संतोख अमुल। ध्यान रूप होय आसन पावे, साच नाम ताड़ी जित लावे। नानक बोले अमृत बाणी, सुनमा छिंदरा औदू निशानी। आसा माहे निराश बलाए, नेचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगम सुनाए, गुर चेले की

गुरु सतगुरु परम चुकाया, को नानक शब्द में लाया। राम कली महला पहला, शादन भोजन मांगत भागै, खुदया दुष्ट जलै दुख आगै।

भगत जन तरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा घर पहला। सतयुग सच कह सब कोई, घर घर भगत गुरमुख होई। सतयुग

सतसंगत मिल बुद्ध पाई। राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कहे सो मुक्ता, राम जपत सुहाय रहाओ।

पड़ भाग हमारे रहाऊ। कोट कोट तती स्त्यावे ताका अंत न पावे पारे, हृदय काम काम नी मांगे, हृदय मांगे हाथ वसारे, हर

ते सुख पाया रहाओ। तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मैं माणक लाला। तुम देवो तिल संक न मानो, हम पुंचो सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा। हम खेलै सब लाड लड़ावै, तुम सदगुणी गही।

0: चांद सूरज दो जरे जरागा चौहो कुंट भीतर राखे दस पांतो पंच संगीता एक है भीतर साथे भिन्न भिन्न होए भाव दिखावे सुबो निरारी पाखे घर घर निरत होवे दिन राति घट घट वाजे तूरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए होए तूरा कहो नानक सो बौर न नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा।
1: ओंकार एक धुन एक है एक रग अलापे एका देसी एक दिखावे एको रहे आबे आपे एका सूरत एका ही सेवा एको गुरते जापे पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुन गाओ छोड़ माया कै तंद सुआओ रहाओ पांच बजे तर करे संतोखा सात सरा ले चाले बाजा मान तान तज ताना पाओ ना बीगा काले फेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाले नारदी नर हर जान हदूरे कुंगर घड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो निरतकारी जन्म न आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक राम कली महला पंजवा। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेव गोसैया कोई अल्लाह है कारण करण करीम कृपा तार रहीम रहाओ कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर निवाए कोई पढ़े वेद कोई कतेब कोई उड़े नील कोई सुपेद कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू कोई बाछे पिस्त कोई सुरगिंदु कौ नानक जन हुकम पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता राम कली महला पंजवा। पवने मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योतरली जाया माटी माटी होई एक रोबन हारे की कवन टेका कौन मुआरे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा ए तो चलत प्या रहा अगली कछ खबर न पाई रोबन हार पे उठ सिधाई परम मोह कै बांधे बंद सुपन पया पखलाए अंदा ए तो रचन रचे।

करतार, आवत जावत हुक्म अपार। न कौ मुआ न मरने जोग, न बिन से अविनाशी होगा। जो ए जानो सो ए नाहे, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे ना आवै जाया। राम कली महला पंजमा, जप गोबिंद गोपाल लाल। राम नाम सिमर तू जीवे, फिर ना खाई महाकाल। रहाओ कोट जन्म प्रम प्रम प्रमायो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुरपूरे नाही उदार, बाबा नानक आए इहो विचार। राग राम कली महला पंजमा, घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद चार पुकारे, ना तू माने। खट पिए का बात वखाने, दस अष्टी मिल एको कहया। ता पी जोगी भेद न लहया, किंकुरी अनुपवा जे जोगी आमत वारो। रे रहाओ प्रथमे वसिया सत का खेड़ा, तृतीय मह कश भया दुतेड़ा। द्वितीया अर्धो अर्ध समाया, एक रहया ता एक दिखाया। एक सूत परोए मणिए, गाठी पहन पहन पहन पहन तणिए। फिरती माला बोबिद पाए, खिचिया सूत ता आई थाए। चौमे के मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। एओ किंकुरिया नु पवा जे सुन, जोगी के मन मीठी लागे। रहाओ दूजा राम कली महला पंजमा, तागा करके लाई थिगली। लो नाड़ी सुआ है अस्ति, अभय का कर दंड धरिया। अभय का कर डंडा तरिया, क्या तू जोगी गर्भ परिया। जप नाथ दिन रे नाई, तेरी खिंथा दो तिहाई। रहाओ गैरी भी भूत लाए, बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त न पावे, नाथ छोड़ जाचे लाज न आवे। चल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुरु गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई। जिसन हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला। नामे खिंता नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर। एओ जपिया नाथ दिन रे नाई, हुण पाया गुर गोसाई। रहाओ दूजा राम कली महला पंजमा, करन करावन सोई आन न दिसे कोई। ठाकुर मेरा सुगड़ सजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले डीठा। रहाओ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पै नह काम। तन मन शीतल अग्न निवारी, आनंद रूप प्रगट है संसारी। क्या देवो जा सब कुछ तेरा, सद बलहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल के वारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पड़दा टूटा, हो तेरा तू मैं मन बूठा। राम कली महला पंजमा, सेवक लायो अपनी सेव। अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी। तिस गुर को हो सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर। बाजे अनहद तूरे सतगुर। रहाओ महिमा जाकी गहरंगा, वीर होए निहाल दे जिस तीर। जाके बंधन काटे राए, सो नर बहुर न जोनी पाए। जाके अंतर प्रगटे आप, ताको नाही दुख संताप। लाल रतन तिस पाले परिया, सगल कुटंब ओह जन लै तरिया।
ਨਾ ਕਿਛ ਪਰਮ ਨਾ ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ, ਏਕੋ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਜਾ, ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਰਸਾਲ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਨ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੀਠਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਚਰਜ ਨੈਨ ਹੋ ਡੀਠਾ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਾਨੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਬਲਾਏ, ਬੁਝਗੀ ਤ੍ਰਿਸ ਨਿਵਾਰੀ, ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਲੀਓ ਸਮਝਾਏ ਰਹਾਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਿਓ ਗੁਰਸਰਨਾ, ਗੁਰ ਪਕਰਾਏ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨਾ, ਬੀਸ ਵਿਸਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨੇ, ਗੁਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕੇ ਹੀ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਹਮ ਤਿਸਕੇ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਨਿਵਾਸ, ਨਾ ਕੋ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬੇਰਾਈ, ਗੱਲ ਮਿਲ ਚਾਲੇ ਏਕੈ ਭਾਈ।

अंधकमाय। खट कर्मा अर आसन धोती, भागट ग्रह पड़े नित पोथी, माला फेरे मंगे भी भूत, ए विद कोय न तरयो मीता। सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की उस उतरी माए, चतर वेद पूर्ण हर नाए, नानक तिसकी सरणी पाए। राम कली महला पंजवा, कोट बिघन नहीं आवह नेर, अनक माया है ता की चेर, अनक पाप ता के पानी हार, जहां को मैया पई करतार। जिसे सहाई होए भगवान, अनक जतन ओआ कै सरंजाम। रहाओ करता राके कीता कौन, कीरी जी तो सगला पवन, बे अंत महिमा ता की केतक बरन, बल बल जाइए ता के चरण। तिन्ह किया जप तप ध्यान, अनक प्रकार किया तिन दान, भगत सोई कल मह परवान, जाको ठाकुर दिया मान। साध संग मिल पह प्रगास, सहज सुख आस निवास, पूरे सतगुर दिया विसास, नानक होए दासन दास। राम कली महला पंजवा, दोस नदी जे काहू लोग, जो कमावन सोई भोग, आपन कर्म आपे ही बंद, आवन जावन माया तंद। ऐसी जानी संत जनी प्रगास, पया पूरे गुर बचनी रहाओ। तन धन कलत मिथ्या विस्तार, हैबर गैबर चल नहार, राज रंग रूप सब कूर, ना बिना होए जासी तूर। परम पुले बाद अहंकारी, संग नाही रे सगल पसारी, सोग हरक मैं दे बिरधानी, साकत एव ही करत बिहानी। हर का नाम अमृत कलमाहे, एहो निदाना साधु पाहे, नानक गुर गोविंद जिस तूठा, घट घट रमैया तिन ही डीठा। राम कली महला पंजवा, पंच शब्द तै पूर्ण नाद, अनाद बाजे अचर्ज विस्माद, केल करह संत हर लोग, पार ब्रह्म पूरन निर्जोग। सुख सहज आनंद पवन, साध संग बैस गुण गावे, तै रोग सोग नहीं जन्म मरण। रहाओ उहा सिमरे केवल नाम, बिरले पावे ओह विश्राम, भोजन पाओ कीर्तन आधार, नहचल आसन बेसमार। डिग न डोले कतहू न तावे, गुर प्रसाद को ए महल पावे, भ्रम पै मोह न माया जाल, सुन समाद प्रभु कृपाल। ताका अंत न परावार, आपे गुप्त आपे पासार, जाके अंतर हर हर स्वाद, कहन न जाई नानक बिस्माद। राम कली महला पंजवा, पीटत संग पार ब्रह्म चिते आया, संगत करत संदूक मन पाया, संते चरण माथा मेरो पौत, अनक बार संत है डंडौत। ए मन संतन कै बलहारी, जाकी उठ गही सुख पाया, राखे कृपा धारी। रहाऊ

तिस पावै सो होए जियो हो। बल जाए नानक सुख हुंदा ते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की। गोविंद संकट मोच शांत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो। हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाद परतपाल जियो। परतपाल अजोद पुरख एको तिसे सिंह रंग लागा कर चरण मातक मेल लीने। सदा आंदिन जागा जियो पिंड ग्रह थान दिसगा। तन जोबन तन माल जियो सद सदा पल जाए नानक सर्ब जिया परतपाल जियो। श्लोक रसना उचरे हर हरे गुण गोविंद बखियान नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान शांत। सो स्वामी प्रभ रख को अंचल ताके लाग जियो। भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो। एक ओट कीजे जियो दीजे आस एक धरनी तरे। साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे। जन मरन बकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूरन थिर जाका सुहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ अर काम मोख मुगद पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ शांत। सगल इच मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो। आनंद पिया बड भागियो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पूर्व कमाए ताकि उपमा क्या घना। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण पना। आपे मलाए गए कंठ लाई तिस मिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते सामे रिया समाए जियो। राग राम कली महला पंजमा राण झुजन राग गाओ सखी हर एक त्यावो। सतगुर तुम सेव सखी मन जिंदड़ा फल पावो। राम कली महला पंजमा रुती सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्मा बाछो साधा धूर। आप नवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर। केलवक काटन पै हरना सुख सागर हर राई। दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याय शांत। जस गावो बड भागियो कर कृपा भगवंत जियो। रुते मां मूरत घड़ी गुण उजरत शोभा बंत जियो। गुण रंग राते धन ते जन जिन एक मन त्याया। सफल जन्म पिया तिनका जिनी सो प्रभ पाया। पुन दान ना तुल किरिया हर सर्ब पापा हंत जियो। बिन बंत नानक सिमर जीमा जन्म मरन रहंत जियो। श्लोक उदम अगम गोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद भावसी नानक नाम उधार। संत सरन साजन परो स्वामी सिमर अनंत सुके ते हरिया थिया। नानक जा भगवंत शांत। रुत सरस बसंत महा चेत वसाख सुख मास जियो। हर जीवना मिलिया मौलिया मन तन सास जियो। कर नौ नैचल आनंद सखिए चरण कमल पर फुलिया। सुंदर सुगड़ सजान बेता गुण गोविंद मुलिया। बट पाग पाया दुख गवाया भई पूर्ण आस जियो। बिन बंध नानक सरन तेरी

सुख रोग पिया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही जाऊं करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात मैं जोत जोत मैं जाता अगल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिवत सवालेओ जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक।